पहला दुख दारू सुख रोग पहया जा सुख ताव न होई। तू करता करना मैं नाही जाहौ करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखया रहाऊ।

ईश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अड़सठ तीर्थ नाले

बारनत पहन पहन तोह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह विद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा।

पाई संबद सतरह सहस पनी जय अर्ध सहस फण तीन कहि जय भाद्रव सदी अष्टमी रव वारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधार।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरऊ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस दिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दे आवे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां

0: गुरु प्यारी सत्संगत किसे किसे गुरमुख का सुभाव होता है जेड़ा इस गल की विचार करे कि यह तन जेड़ा है ना ये मिट्टी की ढेरी है। इस तन का सुभाव है यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो एक दिन तो शरीर ने मिट्टी होना है। घा तुसी कितना इकट्ठा कर लो सुखा हो एक माड़ी जी तीली लाओ तो इकट्ठा होके सड़ के सुभा होके इन्नी हो जाती थोड़ी जी। शरीर का भी सुभा इस तरह का तुम इतने बहर रहने इंडिया में जो असं लकड़ा की मिनती गिनती जी करके थोड़े जे अग बचा लें इतने तुम देखा हो गया फ्यूनरल होम के कुछ नहीं बचता इन्नी सुभा करके दे देंगे कुछ जब तो कोई मनुख विरला है जिहड़ा इस गल नूं कबूलदा है कि शरीर बिन सुनहार है मरण योग है खत्म होना है। तो कोई कोई कहिंदा सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ये वेला है यह तेरा अवसर है तेरी बार घट पीतर तू देख विचार यह अवसर है भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भाज केवल नाम। ये नाम जपन वास्ते मनुखा जामा है प्रशादे तोड़न वास्ते नहीं पेट भरन वास्ते नहीं पेट की पूर्ति वास्ते शरीर मिले ही नहीं असल सत्संग भजन करने वास्ते मिलया है। तो भजन करिया करिए हंसरा जी होना का हुक्म सी तो मैं सोचता सी भी पता नहीं कोई की महसूस करे कई बार असं मृतक तो इस तरह के सब पढ़ते हैं गाने हाँ अक्सर खुशी के समय ज उस तरह के समय में नहीं गाँवते पढ़ते। एक बार एक बीबी ने तर्क किया दमदमा साहब असी दो कॉलेज पढ़ते होंगे सी तो कोई समागम रखिया तख्त साहब से एक बीबी माता भैन आई कहन लगी भी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी सिंह साहबा हुक्म लैन का पता नहीं कितों लैना सवेरे सवेरे अमृत वेले लैनिया तो हुक्म लै लिया। तो बीबी चल गई इन्नी गल करके स्टेज पर बोल बल के बाद ज्ञानी मेवा सिंह जी धर्म प्रचार कमेटी के सकत्र होंगे सन बुजुर्ग सन तो सियाने सन तो ब्लाइंड सन बड़े सूझवान कह लगे कि सानू इस अज तक इस गल की समझ ही नहीं आई कि बाणी पढ़नी कि सुननी कि है असी तो अजे तक इस गल से अड़े रहे कि आ मरण के वे पढ़नी है तो खुशी के वे पढ़नी है सानू यह नहीं पता भी हुक्म कितों भी लै सकते हैं सानू मौत नू हर वक्त याद रखना चाहिए है। तो बीबी कहती भी सवेरे सवेरे मौत चेते कराती लाणिया च हुक्मनामा सिंह साहब जी ने लै लिया बड़ी गलत गल हो सत्संगत इस तरह नहीं होंदा सानू मौत हमेशा याद रखनी चाहिए है। जन्म असी मनाने हाँ जन्मदिन अपने बड़े मनाने हाँ मौत नहीं मनाते मौत नू मनाना चाहिए है मौत नू पल पल याद करना चाहिए सिख सोहला पढ़ के सौंदा है पता नहीं सवेरे उठना कि नहीं उठना। इस वास्ते कोई कोई गुरमुख प्यारा हों अंसरा साहब जी उन्होंने हुक्म सी वैसे मैं आप संगतान इस गल की जानकारी देव कि इन्हों की कृपा सदका इन्हों के उदम सदका इन्हों संजोग बनिया ता ही इतने इस स्टेज पर आप कट्ठे बैठ के गुरु का कीर्तन गुरु की हाजरी भर रहे हैं। सो इतनी हाजरी प्रवान करनी जी भुला चुका की खिमा क्योंकि समा मैं 5 मिनट उपर लै गया ताड़ी जथे का माफ़ी चाहवागा क्योंकि पहला दिन से थोड़ा जहा हो जाता इंट्रोडक्शन करनी पैंदी है। सो नैक्सट टाइम ख्याल रखांगे कि अपने टाइम तो 2 मिनट पहला समाप्ति करांगे भुला चुका दी खिमा जी बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह
1: वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवादी हाँ सत्कारयोग भाई सुखजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब वाले जिन्होंने आप संगत नूं बड़ा ही रस पिन्ना कीर्तन सरवण कराया है इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी अज उस महान योधे की शहादत का दिन है सत्कारयोग शहीद भाई दिलावर सिंह जी जिसने बेअंते बुचड़ नूं अपने शरीर का ठीकरा भोर के ते सिख नौजवानों दियां जो घाण हो रहा सी उस नूं बचाया। सो अपने मैं उसनू श्रद्धा दे फुल भेट करदा होया ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਹਰੇ ਤੇਗ ਜੋ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਕਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਹਲ ਬਿਧੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ, ਆਹ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜੌਹਰੇ ਤੇਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ

0: संत साजन पए सर से पूरे गुरदे जानी
1: सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे
0: बिनवंत नन गुर चरण लागे वाजे अनहद

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाह
Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru. Ah, Guru.

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सुफल फला से सिमरह जने आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु कै सिमरन उदर मूचा, प्रभु कै सिमरन त्रिसना बुझे, प्रभु कै सिमरन सब कह सुझे।

का दासन दसन प्रभु कौ सिम रह से तनवंते प्रभु कौ सिम रह से पतवंते प्रभु कौ सिम रह से जन प्रवान प्रभु कौ सिम रह से पुरख प्रधान प्रभु कौ सिम रह से बे मोहताजे प्रभु कौ सिम रह से सर्व के राजे प्रभु कौ सिम रह से सुखवासी प्रभु कौ सिम रह सदा विनाशी सिम

कमल बिंगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुन कार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरह से जा

जपत काश्य ना है वियोग जानुराता हर नाम की सेवा नानक पूज्य हर हर देवा हर हर जन के मालिक दीना हर तन जन को आप रव दीना हर हर जन के उड़स्तानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भक्त प्रगट नहीं छपे।

लथा नाम की महिमा संत रिदवसे संत प्रताप दुरत सावन से संत का संग बड़ भागी पाइये संत की सेवा नाम ते आइये नाम तुर कछवरन होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु सहस्त्र बहु स्मृति पेखे सर्वट ढोल

साधु नमस्कार। जाके मन लागा ब्रह्मीठा सर्व सुखता हूँ, मन बूठा जिह जने अपना हुक्म नाया, सर्व थोक नानक तिन पाया।

बृहस्पति देह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाए तस ठाकुर कौ राख मन माहे देह प्रसाद सुगंध तन लावे तस कौ सिमृत परम गत पावे देह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मन अंदर देह प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ पहर सिमर हो तिस रसना देह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याईय त्यावन जोग जिह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कतवर लुभावे जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जास गावी जय जिह प्रसाद सब को माने मुख ताको जस रसन बखाने जिह प्रसाद

सारी जिह प्रसाद बाग मिलिख तना राख प्रोय प्रभु अपने मन जिन तेरी मन भंत बनाई उठत बैठत साध तिसेह त्याई तिसेह त्याय जो एक अलख है ईहा ऊहा नानक तेरी रख है जिह प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साह साह चितारी जिह

के जा सकता है। जय प्रसाद सुनह करण नाद, जय प्रसाद पेखे बिस्माद, जय प्रसाद बोलह अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हत कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समावे, ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार, जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाव, जय प्रसाद तेरे कार्ज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे।

सवनमीता नानक बिरवंता साजना की अचरज कथाष्टपदी साध के संग बखूजर होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे वहन साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझय प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक उपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माह समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आभि बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होय सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हूं तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के

सावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुरदेवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम नानक, साध के संग सफल जनम, साध के संग नहीं कस काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध के संग रुहत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग विसरत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध कै संग न बिरथा जावे।

करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ ब्रह ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब प्रमाया ब्रह्म ज्ञानी ते कस बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बर सिंह ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार

देश ब्रह्म ज्ञानी का कैसे न जाय दाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहाथ

प्रावरती बहुविद अनुप्रकार स्पदि कई कोट होय पुजारी कई कोट चार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्म।

कोट अपेगात मिनि कोर, कई कोट पर दर्प को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम वाह, कई कोट प्रदेश परमा है, जित जित लावो तित तित लगना, नानु करते की जाने करता रचना, कई कोड़ सिद्ध जति जोगी, कई कोड़ राजे राज भोगी, कई कोड़ पंखी सिर पे पाई, कई कोड़ पाथर बिखने बजाय, कई कोड़ पवन पानी बैसंतर, कई कोड़ देश भूमंडल, कई कोट शशि अर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समगरी अपने सूत धार, नानक जेस जेस भावे तेह तेह निस्तारे,

अविनाश कई कोड़ मांग है सतसंग पार ब्रह्म तिन लांगा रंग जिन कहोए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई

सुख पावे, तन बंता हुए कर कृपावे, त्रिन समान कह संग न जावे, बहुलत कृमानुख प्रकरिया, पर भीतर ताका हो विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिनमय हो जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्मराज तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान, सो जम नानक दुर्गे परिवान, कोट कर्म करे हम तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार, अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे, हर धर गए कहो कैसे गवे, आपस को जो भला कहावे, तिसे भलाई निकटो न आवे, सर्व की रेन जा का मन हुए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए,

सहज सुपाए होवै सो होए करने हार पिछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जय साथ साथ तैसा दृष्टान जिस देव जित हिमाय समाये हुए सुख निदान अनु बनाए आप को आप दिनो मान नान प्रभु जने को जान सलोक सर्व कला परपूर प्रभ बिरथा जान हार जाके सिमरनी उदरी ऐ नानक तिस बलिहार अष्टपदी

पाय अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरे सतबलिहारी सतगुरिया प्रे नानक देह प्रसाद ऐसा प्रभ जपने।

नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, मने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मने काबे करन विचार, सा नाम दरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनाए सुरत होवे मन बुद्ध, मनाए सगल भवन की सुध, मनाए मोह चोटा ना खाए, मनाए जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन हो जे को मन जाने मन कोए, मनै मार्ग ठाक न पाए, मनै पत स्यों प्रगट जाए, मनै मग न चलै पंथ, मनै धर्म से तीसन बांध। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, मनै पावे मुख दुआर, मनै परवारे साधार, मनै तरे तारे गुर सिख, मनै नानक भवे ना भेख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंच सुह दर राजान, पंचा का गुरेक ध्यान, जे को कहे करे भी

थाप रख्या जन सूता। जे को बुझे होवे सचे आर तबले उपर के ता भार धरती होर परे होर होर तिस्ते भार तले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम। इहो लेखा लिख जाने कोहे लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल रूप केती दार जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कमन का विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सुर मोह भकसार असंख मुण लिवलाए तार। कुदरत कवन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेरा हे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करे भार नानक नीज कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो संकाय सिर भार होय अखरी नाम अखरी सोलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सर संजोग बखाण। जिन्हें लिखे ते सरनाए जे फरमाए ते उते

वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोते तो उतर सखे मूत पलीती कपड़ होए देह साबून लइए ओ धोए तो भरिए मत पापा कै सांगो धूप तो नावे कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर कर ना लिख लै जाहो आपे बी जापे ही खाहो नानक हुकमी आवो जाहो तीर तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाऊ अंतरगत तीर्थ मल नाओ।

सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन हो, कवन थित कवन वार, कवन सुरुति माहो कवन जित हुआ, आकार वेल न पाईया पंडती, जे हो वे लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां, जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने, रुत माहो न कोई, जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सलाही, क्यों वरणी किव जाना, नानके आखण सबको आखे, एक दू एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने, अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगा, सोड़ कोड़ कपाल थके, वेद कहन कवात, सहसो ठारे कहन कतेबा, सलू एक धात, लेखा होए ता लिखिए, लेखे होए बनास, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। सलाही सलाहे ती सुरत ना पाईया, नदियां ते वाह पवै समुंद ना जानी है, समुंद सा सुल्तान, ग्रह से ती माल धन, कीड़ी तुल ना हो बनी, जे तस मनो ना विसराय। अंत ना सिवती कह ना, अंत अंत ना करणे दे ना, अंत अंत ना वेखण सुन ना, अंत अंत ना जापे क्या मन मंत, अंत ना जापे कीता कार, अंत ना जापे पारा वार, अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊचा था, ऊचे ऊपर ऊचा नावे, बड़ी ऊचा होवे कोए, ते सूचे को जाने सोए, जे वड़े आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोध्य पार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खब तुटे बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाए, केत्या दूप घुसत मारे, पे दा तेरी दातार। बंद खलासी पाने होए, राख न सके कोए, जे को खाए के आखण पाए, जाने जे तिया मुखाए, आपे जाने आपे दे, आखे से पे के ही के, जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वपार, अमुल वपारी अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल लै जाहे, अमुल पाए मुला सुमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फरमान। अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिवलाए, आख है वेद पाठ पुराण, आख है पढ़े करे बखियाण, आख है ब्रह्म, आख है इंद, आख है गोपी तय गोविंद, आख ईश्वर।

आखै सुर नर मुन जन सेव इत आख आखन पाहे केते कहे कहे उठुट जाहे ते कीते होर करे ताक न सके के ई के जेवड भावे तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बगाड़ तां लिखिए सरगा वा रंग वार सोदर के आसो करके आ जित बै सर्ब समाले वा जे ना दे अनेके असंखा केते बावन हारे केते राग परि स्यों कहियन केते गावन हारे गावे तो न पौन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ही सर ब्रह्मा देवी सोन सदा सुवारे गावे है इंदे उदासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावे है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन्यो पाए तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनों गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पियो सी जाए न जासी रचना जी नरचाई रंगी रंगी भाती कर कर जनसी माया जी ने उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साह पात साहिब नानक रह रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली त्यान की करे बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जग जीत आदे तिसे आदे साध नीला नाद नाथ जुग जुगे को वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्यवरा साध संजोग मंजोग दे कार चलावे लिखे आवे भाग आदे तिसे आदे साध नीला नाद नाथ जुग जुगे कोवे से कामाई जुगत व्याई तन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिव तिस पावे तिवे चुलावे जिव होवे फरमान ओ वेखे ओ नानदर न आवे बहुता एहो वडान आदे तिसे आदे साध नीला नादनाथ जुग जुगे को वेस आसन लोय लोय भंडार जो किछ पै सुका वार कर कर वेखे सृजन हार नानक सचे की साची कार आदे तिसे आदे साध नीला नादनाथ जुग जुगे को वे सिख दूजी पौ लख हो लख होवे लख वीस लख लखेड़ा की एक नाम जगदीस ए तरह पत पवड़िया चढ़िए हुए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस आखन जोर चुपे न है जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मरन न है जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेख सोए नानक तुम नीच न कोए राती रुती थिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आव सच्चा दरबार तिथै सोन पंच प्रवान नदरी करम पवे निशान कच बगाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काए आखो कर्म केते पवन बणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेरे केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पा नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नंत ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बिनोद कोड़े आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मामाहे ताके रूप न कथने जाहे ना उमरे न ठाके जाहे जिनके राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे कह लो करे आनंद सचा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे तांत नांत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुक्म तवे तिवकार वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार
जत पहारा तीर जसनियार हरण मत वेद अथियार भौख लागण तबता ओ भांडा भाव अमृत तित ढाल घड़िए सब सची टकसाल जिनको नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे तरमह।

राजे समस सत धामंग तिरा जोर चाचरी छंद जले है थले है भीत है अभे है प्रभु है अजू है देश है भेस है भयंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेसे नमो राज राजे नमो साज साजे।

कि सर्वंग दली है, कि सर्वत्र माने, कि सर्वत्र दाने, कि सर्वत्र गाउने, कि सर्वत्र पाउने, कि सर्वत्र देसा है, कि सर्वत्र भेसा है, कि सर्वत्र राज है, कि सर्वत्र साज है, कि सर्वत्र दीना है, कि सर्वत्र लीना है, कि सर्वत्र जाहू, कि सर्वत्र पाहू, कि सर्वत्र देसा है, कि सर्वत्र भेसे, कि सर्वत्र काले, कि सर्वत्र पाले, कि सर्वत्र हंता, कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र भेखी, कि सर्वत्र भेखी, के सर्वत्र काजे, के सर्वत्र राजे, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भुख है, के सर्वत्र त्राणे, के सर्वत्र प्राणे, के सर्वत्र देसा, के सर्वत्र भेसे, के सर्वत्र मान्या सदैव प्रधान्या, के सर्वत्र जाप्या, के सर्वत्र थाप्या, के सर्वत्र भान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है, के करम परमंग फरहीम है, के सर्वत्र के सर्वंग कलीम है, के परमंग फहीम के अकाल अलामे, के साहेब कलामे, के उसन अला वजू है तमाम रुजुआ में सलो सलामे, सलीख तुम दामे, गरीब उल सगते, गरीब उल फरसते, बदल मुकामे, जमीन उल जमान है, तजी तमी जोल तुमामे, रुजुल निधाने, रिफुला जी मै रजाई कर जकीने, अनेकुल तो रंग है, अभेद है, अभंग है, अजी जुल निवाज है, गनी मुल्क राज है, निरगत स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रयुक्त प्रभा है, सुयुक्त सदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्त पुराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सुलाम है, सदैव लिया काम है, इंद्रभाद स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओहंगाद रूपे, अनाद स्वरूप, अनंगी, अनामे, त्रिभंगी, त्रिकामे, त्रिभंग, त्रिभादे, अगंजे, अगाधे, सुभंग, सर्वभागे, सर्वरा सर्वरा सर्वस सर्वरा अनुरागे, विभूत स्वरूप है, आशज आशूत है, अनरंक प्रणास है, पृथ्वल प्रणवास है, पृथ्वल प्रवास है, निरकुत प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरकुत सदा है, विभुक्त प्रभा है, उनकत

करी मुल्क माल है के जुरतु जुमाल है के अंचल प्रकाश है कि मतो सुबास है के अजब स्वरूप है कि मतो विभूत है के आत्म पसा है के आत्म कहो अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अंचल अनांग है कि मतो अभंग है मधुभार शांत है प्रसाद है।

जानत महा मूढ़ छ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के बुद्ध सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई पूपांड जेरा से तज कीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा बैठा कहूं सिमट भव शंकर या कैठा सगरी सुर दुखाया चंपवा जगा सुरु सुजम भाव

कृपा दृढ़ तन जय न हरहु ताके ताप तनक मोह हरहु रिद सिद्ध कर्म सब होई दुड़छा छव सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सुमवारा काल फास्ते ताही उबारा जिन नर नाम तुहारो का दर्द दुष्ट दुग तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आपा दे लिहो अबारी सर्ब ठोर मोह सुहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी अंपर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल विक सगल दे को हरता दुड़ दुखियन को छह।

मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तना सुबाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहिंदे सरत कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर अनित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन काहिर लया माया बोलन भैर वाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा हो आसमाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन हीरा जित जड़ाओ।

खंड ब्रह्मांड पताल दीप रव्या सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझ से निर्मल जन सोई, जिस आप बुझाए सो बुझ से निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन हाजरा हजूर, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में सज बैठी गुरु प्या रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आ भागा वाले जीवो जिन्होंने गुरु साहब जी की हजूरी में बैठ करके गुरबाणी सरवण की, सुखमणी साहब जी के जाप पंजा बाणियों का नितनेम हुक्मनाम हुक्मनामे सरवण किए, गुरु साहब जी कृपा करन आप संगतां दे सिर ते मेहर भरे हाथ रखण, दरों घरों नाम की दात गुरसिखी जीवन तंदुरुस्ती दीयां दातां बख्शिश करके निहाल करन। आओ हुण गुरु साहब जी दे रागी सिंघां तों कीर्तन सरवण करके, आसा दी वार दे कीर्तन सरवण करके अपना जन्म सफला बनाउणा करिए। गुरु दरबार दीयां हाजरियां भरीए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ब्रह्म पछानण वाले मात भानी नंदन बाणी के बोए थे धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की रचना तो उचारण कीती हुई ये समूलची वार जिसनू जैतसरी की वार कहिंदे ने इसका जो पहला ही सतसंग जी पौड़ी दे नाल लगदा श्लोक है पहला सैट है वो अज महाराज ने श्री मुख वाक दे रूप विच बख्शिश कीता है। ये बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 705 अते 706 दे उत्ते शिशोभत हैं। सरलेख है जैतसरी महला पंजवां जैतसरी राग विच हेठ लिखे बचन पंजवें पातशाह दे हन। वार शलोकां नाल क्योंकि मूल रूप में वार पौड़िया के संग्रह कहिंदे ने इस वास्ते नाल शलोक भी ने गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे ने ये वेरवा उपर सरलेख में लिख दिता गया है। मंगलाचरण वजों सतगुरु जी ने आप भाई गुरदास जी नूं कह के दर्ज करवाया लिखो भाई जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साडा जिहड़ा ओंकार है वह एक है और वो जो एक रस नाश रहित अकाल पुरख वाहिगुरु है उसनू प्राप्त करना होवे ते सतगुर प्रसाद सतगुरु की कृपा द्वारा उसनू प्राप्त किया जा सकता।

0: अमरदास पारसी है, ओहे पातक विनाशी। गुरु अमरदास पारसी ओहे पातक विनाशी। गुरु अमरदास पारसी सिद्ध साधक असासी। गुरु अमरदास पारसी सिद्ध साधक असासी। गुरु अमरदास
1: पारसी
0: ध्यान लइए पौ मुख्य। गुरु अमरदास
1: पारसी
0: ध्यान लइए पौ मुख्य।
1: गुरु अमरदास पारसी
0: अबो लवे गो
1: चुके।
0: गुरु अमरदास पारसी अबो लवे गो चुके। एक बेन
1: दुख
0: गण जो तो रहे सा जा स्मृत मान माल। एक बेन दुख गण जो तो रहे जा स्मृत मान माल। जाल का
1: पदार्थ इतरे गुर अमरदास
0: डिठे मिले। जाल पाप दार्थ इतने गुर
1: अमरदास डिठे मिले।
0: त्रासी महला पंजमा औखी
1: कड़ी न देखण दे
0: अपना
1: बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को साथ प्रत पाले। प्रभ से लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ।

0: सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूरन पैज रखाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूरन पैज रखाई।
1: गौड़ी

पतिं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदाहरण साध संगम है ग्रंथ गिर पतत पाताल जलंत दी जलंत दे दीपे बैसवंत रह बहंत अगाह तो अंतरंग दुखंत गुरु दुखंत अग्र चिंता जन्मंत मरण है अनक साधन न सिद्धियते नानक अस्तंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्र्यं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गोणर मंत अग खंडन है हृद बसंत पैपीत दूत कर्म करत महानिर्मल है जन मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रे नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासं आस पूर्ण है निरतान भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दाता रह नानक गुरसेवा किं ना लभ्यते अतरं तरं तारण है निरतानं तान नाम नर हर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बाल केशव है सर्वभूत दयाल अचोत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूरन पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय है घट घट बसंत बास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जाचंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरतं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तम तब प्रसाद सिमरत नाम नानक कृपाल हर हर गुरं परण पोखण करंत जिया बिसराम साधन देवंत दान सरजंत रतन जन्म चतुर चेतन है वर्तंत है सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पचंते महिपते विपरीत बुद्धिंग मारत लोक नानक चिरंकाल दुख भोगते व्रत अनुग्रहं गोविंद है जस सिमरन रिदंत रह आरोग्यं महारोग्यं बेसिमृत करुणामय है रमणं केवलं कीर्तनं सो धर्मं देह तारण है अमृत नाम नारायण नानक पीवंत संत ना तृप्यते सहनशील संतं साम मित्रस दुर्जन है नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद हुए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान भंगन है स्वबाहीन नह पवंत नह पवंत संसार दुखन है गोविंद नाम जबंत मेल साध संग नानक से प्राणी सुख बासन है सेना साध समूह सूर अजतं सनाहं तन निमृताः आवद है गुण गोबिंद रमणं ओट गोर शब्द कर चरमण है आरूढ़ते असव रथ नग है बुझंत प्रभ मार्ग है विचरते भयं सतर सेना तायंत गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पंच तस्कर है मृग तृष्णा

गंधर्वनगरं द्रोमशाया रच दुर्मतः ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नमः। नच विद्या निदान निगम नच गुण नाम कीर्तन नच राग रतन कंठं नह चंचल चतुर चाचन नह चंचल चतुर चातुर भाग उदम लब्धं माया नानक साध संग खल पंडित है। कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जे पिणिज उत्तम श्लोक उदरण नैन नंदनी गुर मंत्रण गुरमंत्र हीनस्य जो प्राणी त्रगंत जन्म प्रष्टन कुकरह सुकरह गर्दबह काकह सर्पनह तुलखलह चरणार बिंद भजनं हृदयं नाम तारण कीर्तनं साध संगेन नानक नह दृष्टंत जमदूत नह। नच दुर्लभं तनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजनह नच दुर्लभं भोजनं बिंजनं नच दुर्लभं श्वशंबरह नाच दुर्लभं सोत।

चंचला है। दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धं साध संग कृपा प्रभम जत कतहे।

नाश्यामं अचर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच पार गोविंद बसंत सादर दिंग अचुत बजंत नानक बड़ भागी है। उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है। विखम स्थान मान मोह मंदरं महासाध पंचतस्कर हित मोह पै परम ब्रह्मणं अं पास तीक्षण कठिन है। पावक तो साध कोरं अगम तीर नहलंगण है। पाज स

ब्राह्मण साध संगण गुण हरमत नानक शरण पूरन परमेश्वर श्यामलं मदर मानुक्यं हृदयं भूम वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजन चेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सहस नित परते सृजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्त रचंत पुरखे कुटंब लीला अनित आसा भिख्या विनोद परमंत परमंत भोजन महार्यो शरणदानक करुणामय है हे जेबे हे रसगे मदर प्रे तोयंग तने हे जेबे हे रसगे मदर प्रे तोयंग सात हतंग परम भादंग अवर्त इत है शुद्ध अचरण है गोबिंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मधोन मतंग बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत तृण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रष्टे गोबिंद सिमरण तोयंग तने नानक अनक भार नमो नमः तृणं तामेरंग सहकं ता हरियं बूढ़ं ता तरियं ऊणंग ता पर्यं अंधकार अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गोर दयारं ब्राह्मण है संग उदृणं ब्राह्म कर्म से पूर्ण है आत्म हतं संसार गहं ते नर नानक निफल है पारदर्भ हिरणं बहु विघ्न करणं उचरणं सर्व जी कह लोलय तृष्णा अतिपत मान माये कर्म करत से सुकर है मते समेव चरणं उदरणं पै दुत्र है अनेक पातक हरणं नानक साध संगं न संशय है महला पंजवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोप सुगंधा परस मानुख्य देहं मलिन मजा रुद्र दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञानो परजानो परजंत आकाश दीप लो सिखंडन है गशेण नैन पारेण नानक बिना साधु न सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंतो पाणत नानक साध संगेण माया चित प्रजेण इष्ट मित्र एक बांधव लब दिंग साध संगेण नानक सुख अस्थान गोपाल भजनं मैं लागर संगेण निम बिरख से चंदन है निकट बसंत बासो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुंप गोपाल मथं गाता गुंफ गोपाल कथं मथंग मान मर्दन है हतंग पंच सत्रेण नानक हार बाण प्रहारण है भजन साध सुख पंथा लहंता बड़ कर्मण है रहंत जन्म मरणेन मरणं नानक हार कीर्तन है पत्र प्रजेण चढ़ियं न जड़ियं पेड़ संपता नाम विभूण बिकमता नानक बहंत जोन बासुरो रैणी भावनी साध संगेण लबंत बड़ पागण है हर नाम गुण रमणं नानक संसार सागर नह व्यापण है गाथा गोड़े अपारं समझनं बिरला जन संसार काम तजनं नानक गोबिंद रमणं साध संगम है सुमंत्र साध बचन कोट दोग बिना सुने हर चरण कमल ध्यानं नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन जीण मद हर कीर्तन है मुक्त रमण गोबिंद नानक लब्धंग बड़ पागण है हर लब्ध मित्र सुमित बिदारण कदे न चित्तो जाका अस्थल तोल अमितो सुई नानक सखा जी संग कितो अब जसंग मटंत सतर पुत्र है सिमर तब्य हृदय गोर मंत्रण है प्रीतम भगवान।

नाम त्यावण है लबण साध संगेण नानक हार पूरब लेखण है दसन बिहून पुनंग मंत्रं गारी निवारं व्याद उपाणं संतं नानक लब्ध शरणं नानक लब्ध कर्मण जत तथ रमणं शरणं सर्वत्र जीर्ण है तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन है चरणारविंद मान विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलन गाथा गवंत हे नानक पव्यंग परापूर्वण है सब वचन रमणं गमणं साध संगेण उदरण है संसार सागरं नानक पुनरप जन्मना लभ्यते वेद प्राण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उतारं कुल समूह सगल उदारं बड़भागे नानक को तारं सिमरण गोबिंद नामं उदरण कुल समूहण है लब्धं साध संगेण नानक बड़भागे पेटंत दर्शन है सर्व दुख परंग त्यागे सर्व धर्म दृढ़ंतण है लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण है होयो है होवंतो हरण भरण संपूर्ण है साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारण सुखेन बैन रत्नं रचनं कसुंब रंगण है रोग सोग वियोग नानक सुख न सुपन है पुनः महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलाम गम मस्तक लेखावती उजर सब संग नूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुखो तुहारिया मोहि देख दर्शनान बलहारिया संत सभा में है बैस के कीरत में कहार पी साब सिगार एहो जीव साब देवा आस प्यासी सेज सुकंत विशाय हर हा मस्तक हुए भाग ता साजन पाइय सखी काजल हार तंबोल सब किस साजया सोल है किए सिगार के अंजन पाजया जिगरिया बेकंत ता सब किस पाइय हर हा कंत बाज सिगार सब बिरथा जाइय जिस घर बसया कंत साबड़ भागने तिस बनया हब सिगार साई सुहागने हों सुती होय चिंत मन आस पुराइया हर हां जह कर आया कंत ता साब किश पाइया आसा इते आस के आस पुराइया सतगुर पाए दयाल ता पूरा पाइया तन अवगुण बहुत के अवगुण छाया हरा सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तर एहो संसार सतगुर दुत्तर एहो संसार सतगुरु तराया मिटया वा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया

नाउ कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए निर्भय होए कै गुण रवै जत पेखो तत सोए। कबीर जादन हो मुआ पच पया आनंद मोहे मिलो प्रभ अपना संगी भजे गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोई जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पह अनक करे कर पीख हम राखे गुरे अपने उनकीनो आदेश। कबीर सोई मारिय जेह मुए सुख होए भलो भलो सब को कह गुरु न मन कोय। कबीर राती होवे कारिया कारे उबे जंत लै फाहे उड़ तावते से जान मारे भगवंत।

कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन नहीं पार, खू नहीं गाक नहीं मोल, कबीर तास प्रीतकार जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति आवे कौन काम, कबीर प्रीत एक सो की आन दुबदा जाए, भावे लांबे की सुकार पावे कर रमुडाए, कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे, अम्बलहारी तिन को पैस जो निकस जाहे, कबीर एह तन जाएगा सको ता लेह बहोर, नांगे पाव ते गए जिनके लाख करोर, कबीर एह तन जाएगा कवने मार गलाए, कै संगत कर साध की कै हार के गुन गाए, कबीर मरता मरता जाग मुआ मार पी ना जानिया कोय, ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए, कबीर मानस जन्म दुलंब है होए ना बार बार, जो बन फल पाके पोए गिरहे बहुर ना लगे डार।

ना चंकिया तुमरो कहो ना होए करम करीम जो कर रहे मीट ना सके कोय कबीर कसौटे राम की झूठा टक ना कोय राम कसौटे सो सह जो मार जीवा होए कबीर उजल पहरे कापरे पान सुपारी खाहे एक सहर के नाम बेन बादे जम पुर जा।

तेरा रब रहे अवर तजे सब काम। कबीर परदेसी घागर चौ दिस लागी आग, खिंथा जल कोयला पई ता क्या चुन लाग। कबीर खिंथा जल कोयला पई, खापर फूट मफूट जोगी बपड़ा खेलो आसन रही विभूत। कबीर थोर जल माछली चीवर मिलो जाल, एह टोगन ना छूट स फिर कर समुंद संभाल। कबीर समुंद ना छोड़िए जो अत खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते पालो ना कह है कोय। कबीर ने गुसाए बह गए थांगी ना ही कोय, दीन गरीबी अपनी करते हुए सो होए। कबीर बैसनो की कुकर भली साकत की बुरी माए, ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप विसाहन जाए।

छूटते पाप। जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। कबीर माया तजी तह क्या प्या, जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मनेवर गले, मान सबे को खाए। कबीर साचा सदगुरु में मिलया, शब्द जो बाहया एक। लागते पोए मिल गया, परया कले जे छेक। कबीर साचा सदगुरु क्या करे, जा सिखा में चूक। अंधे एक न लगे, ज्यों बांस बजाइए फूक। कबीर है गए बाहन सघन, कान छत्रपति की नार। तास पटंतर नाप जाए, हर जन की पने हार। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। ओ मांग सवारे बिख को, ओ सुमरे हर नाम। कबीर थुने पाई थित पाई, सदगुरु बंदे तीर। कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जौहरी, लेके मांडे हाट। जब ही पाये पार्क, तब हिरन की साठ। कबीर काम पर हर सिमरिया, ऐसा सिमरो नित। अमरा पर बासा करो, हर गया बेहोरे बेत। कबीर सेवा को दोए पले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त कहो, संत जपावे नाम। कबीर जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहिर। एक अवगट काटी राम के, जय जड़ चारे रहो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ, सुचालत कुल के काल। तब कुल किसकी लाज से, जब ले तरे मसान। कबीर डूबो गो, कबीर डूबे गो रे बापुरे, बहु लोगन की काल। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर भली मधु करी नाना बिद को नाज। दावा कहू को नहीं, बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दाजन होता, निर्दावे रह निशंक। जो जन निर्दावे रह, सो गन इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूह सर पर परा, पी न सके कोई नीर। पाग बढ़े ते पायो, तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे, त्यों ए खिसे शरीर। ए दो अखर ना खिसे, सो गह रहो कबीर। कबीर कोठी काठ की, दैद लागी आग। पंडित पंडित जल मुए, मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसार दूर कर, काग दे बिहाय। बाबन अखर सोध के, हर चरणी चेत लाए। कबीर संतन छाड़ संत, जो कोटक मिले संत। मलिया गर्पु अंगम बेडियो, तैसी तलता ना तजंत। कबीर मन शीतल पया, पाया ब्रह्म ज्ञान। जिन ज्वाला जग जारिया, सो जान के उदक समान। कबीर सारी सिरजन, हार की जाने नहीं कोई।

लिखे। कबीर सुर चांद के उदय पै सब दे, गुरु गोविंद के बिन मिले पलट पै सबके। जय अनुपो चय पै नहीं, जय पौ चय हर नाहे। कहो कबीर विचार के, संत सुनो मान माहे। कबीर जिनों किछ जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए।

लागे चोट मरम के रहो कबीर ठर कबीर चोट सहले सेल के लागत ले उसास चोट सहारे शब्द के तास गुरु मैं दास कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े साईं न बहरा होए।

आए कबीर जाके दिल सा बत नहीं ताको का खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जय सिमरत दुख जाए दिल में साई प्रगटे बुझे बलंती नाय कबीर जोरी किए जुर्म है कहता नौ हलाल दफ्तर लेखा मांगिए तब होएगो कौन बाल कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन

हरख सोग दने तब हर आप आप कबीर राम कहन में पेद तम एक विचार सोई राम सब कह सोई कौतगहार कबीर राम राम को कह बे मै बबेक एक अनेक मिल गया एक समाना एक कबीर जाकर साधना से भी है हर की सेवा ना है।

गया मेरा। कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हू। जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। कबीर विकार है चितवत चूट करता है आस। मनोरथ कोई ना पूर्यो चल उठ निरास। कबीर हर का सिमरन जो कर सो सुखिया संसार। ये तो तकत है ना डोले जिस राख सृजनहार। कबीर कहानी पीड़ित सदगुरु लिए छाए। परा पूर्व बलि पावनी प्रगट होई आए।

कबीर की चढ़ू आटा गिर पर्या किचना किचनायो हाथ पीसत पीसत चाबिया सोइन ब्या साथ।

बात। कबीर के सुख सुख किए ना सोये असार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पाया, मन कुंचर मया मंता। अंकस ज्ञान रत्न है केवट बिरला संत।

कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो खटग कुटाम्ब तंदई में मर गयो बार पई न बम्ब कबीर आखे के रे माटुके पल पल गई बिहाए मर जंजाल न छोड़ जम दिया दमा माया।

खेलत खेलत हाल कार जो कि होए ता होए कबीर जो तय साध पिराम के पा कैसे खेल काचे सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल टूडत डोले अंध गातु अर चिन्हत नाही संत कै नामा क्यों पाइये बिन भगत भगवंत हार सो हीरा छाड़ गए कर आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सदपा खैर रविदास

फरीदा दे जाना तेल थोड़े बमल बुक भरी दे जाना सौ नंडड़ा ता थोड़ा मान करी दे जाना लाड छिजना पिडी पाई गंड ता देवड़ मैं ना को जा सब जग डिठा हंड

परिदादे कपराय चोपड़ी ना तरसाय जीवो आजन सुते कंत से अंग मुड़े मुड़ जाए।

साई जाए संभाल जिथे ये तो वंजना फरीदा जिन्नी कमे ना है गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थे वही साई दा दरबार फरीदा साहेब दे कर चाकर दिल दे लाए प्राण।

परे वण कंबिया पत चढ़ चढ़ पाहे चारे कुंडा टूंडिया रण के ताऊ नाहे फरीदा पाड़ पटोला ताज करे कंबलड़ी पैरे ओ जिन्ने वैसे सौ मिले जिन्ने वैसे सौ मिले सही वेश करे ओ

जो जगन लहन सह साई कन्नो दात दाते साहेब संधिया क्या चल जिस नाल एक

changwa jeto priya disheka yavnata he kahida ek ankar sat naam karta prak nirbhau nirvairya kal murta junisa pangur prasad swaya srimukh vak mahalla panchma आद पर करता हर करण कारण सब आपे सर्व रेव पर पूर्व सगल कट रेव बे आपे व्याप देखिए जगत जाने कौन तेरी गात सर्व की रखे आ करे आपे हर पात अविनाशी अभिगत आपे आप उत्पात एक तु ही एक अन नाहे तुम पात हर अंत नाही पारा बार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत हर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बल हार अमृत बरबा सर अतुल भंडार पर हित पर अपर अपार पर आपन पावन कर मंत्र न दूसरो तार उपत पर लो एक निमक तू कार आन नाय संसर दियार निर्मार कोट पर आचत जाय नाम लिये हर हर जन नान भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक दि क्या बखान हाँ के बल बल बल बल सद बल हार सगल पवन तार एक तय किए बिचारे पूर्य सर्व में आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे दि जंत सब थारे सगल को दाता कह अलख मुरारे आप हे तारण तारे कुदरत है दिखारे वर्ण चिन्ह नाय मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक दी क्या बखान हाँ के बल बल बल बल सद बल हार सर्व सर्व गुण निधानंग कीमत न ज्ञानंग ध्यानंग उचित।

कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद्युत करिय सद सारित तिसको रतिर कीमन परिय ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत न पाए अगो गयो नहीं जाए पूर्व सर्व रहो समाए जे काटे सर्ग दयाल प्रभु से ही जन लगे भगते हर गुरु नानक जन पर सोते तुत सदा मुक्त प्रभु धातु दातर पर जात के सरना मिले दान संतरे जय लग पव जल तरना बिनत कर अरदास सुनो जय ठाकुर पावे दे दर्श मन चाओ भगते मन ठहरावे बलियो चरा गंध हर में सब कलियुदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नान गुरु पार ब्रह्म सवैय श्री मुखवाक महला पंजमा क्यों कर सतगुरु प्रसाद काची दे मोह फुन बांधे सठ को ठोर को चिल को ज्ञानी तावत परम तो रहन नहीं पावत पार ब्रह्म के गत नहीं जाने जो बन रूप माया मद माता विचलित विकल बटो अभिमानी पार तन पार अपवाद नार निंदा जय मिठी दी माहे तानी बल बंच छप कर त्यो पावा पेग सुन प्रभु अंतर जामे शील धर्म दया सच नासत आयो शरण जी के दानी कार

चारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत बेकार दो कर चारो मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उलटत जात बिरके चारो दीन दयाल पुरख प्रपूर्ण छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पत नाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा करतारो प्राण।

जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम बाका अनक भांत थाटाए कर थटुआ स्वये महल्ले पहले के पहलाए क्यों कर सदगुरु प्रसाद एक मन पुरख त्याय।

दुर्त निवारण सब दुसर गावे गंभीर तेर मगर जोगे जंगम ध्यान तरह गावे इंद्राद भगत प्रहलाद आत्मरस जन जाड़ो कब कल सुज सुगावो गुरु नानक राज जोग जन माण्यो गावे जन का जुगत जोगेसर हर रस पूर्ण सर्व

कल मंडल वे भक्त पाए रस जाण्यो कब कल सुज सगाव गुरु नानक राज जोग जन माण्यो गाव है कपिलाद आद जुग सुर अपरंपर अवतार वरो गाव जम दगन परमाशर वर परम परस रामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उंडो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जन जाण्यो काब काल सुजस गावो।

मान सार अजगर जन किया अनुमान हर हर दर्श समान आत्मा बतंगे आन जानिया कल गत गुर परवान जाके दिसिया चल ठान बिमर बुद्ध स्थान पैर सिर सना सकत बेदार कहो कीरत कल सार शब्द दे मझार लहना जगत गुर पर सुमरार दृष्ट तरत तुम हरण दहन अग पाप परनाशन शब्द सूर बलवंत काम यर क्रोध विनाशन लो मो वस करण स्वर्ण जाचक प्रतिपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सदगुरु कल सदगुरु ते

मन बेसाद पायो गैर गौ हजरत दियो गरल नास तन नठ्यो मेव अंतर्गत पियो हृद विकास जागयो अलख कल तरी जुगंतर सदगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उदारो चित दार धरण पिखन तय कल मल त्रसन साध रंग सहज कल उतर जस जंपो लैण रसन नाम अवखद नाम आधार हर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोय रंग रतो नाम सुकल नाम सुर नर बोहे नाम परस जन पायो सस प्रगट राब लोय दर्शन बरसे गुरु कै अठ सठ मजन होए सच तीरथ सच स्नान हर भोजन पाओ सच सदा सच पाखंत सोह सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति बोह सच संजम वरत सच का भजन कल वखाण दर्श

स्वयमलति जगति दायकं कर सद्गुरु प्रसाद सोय पुरख से वरसाचा दंका एक नाम अचल संसार जन भगत पव जल तारे सिमर सोय नाम प्रदान तित नाम रस को नानक लैना थप्यो जैन सर्व सिद्धि काव जन कल सुबधि कीरत जन मृदास विस्तीर कीरत राव किरण प्रगट संसार स्वागत रो ब्रह्म सरा उत्तर दक्षण पूब अर पश्चिम जय जयकार जवंत नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदाय उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अचल भगत पवतारण अमरदास गुरु को पुरिया सिमर सोई नाम जाख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरन खतर अवर ध्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा सस्यर यार सूर नाम उलास सहलो जन उदरिया सोई नाम अचल भगत पवतारण अमरदास गुरु को पुरिया सोई नाम शिवर नवना निरंजन शिव संकाद सोम तरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध

शील बलवंत सतपाय संगत सगन गुरु मत निर्वैर लीना जस धीरज तुर तवल तुझा सेत बैकुंठ बीणा पर सिया संत प्यार जय सद करता रह संजोग सतगुर सेव सुख पायो अमर गुर कीत्यो जोग नाम नावण नाम रस खान अर भोजन नाम रसदा चाय मुख मिस्त बाणी तन सतगुर सेव्यो जिस पसाए गत आगम जाने कुल समू समू तरह पायो नाम निवास सक्यात जन्म कल चराय गुर परस्यो अमर परगास बारज कर दहन सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद

मुख भगत उचराय अमर गुर एक अमर गुर इत रंग रत मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच तिन पायो चरण ते परस के हथ चरण गुरु अमर पवल रहे हाथ ते परस के हथ हथ लगै गुर अमर पै जह ते परस के हथ जी गुर अमर पणि जै नैन ते परस के हथ नैन गुर अमर पखी जै सरवण ते परस के हथ सरवण गुर अमर पणि सुणि जै सुखियाथ सोहियो जित बसै गुरु अमरदास निज जगत पित सुखिया

गुरु अमरदास कीर्त कहत्रा हित्राय तोय पासरण आपन राण कला तार जग मह परवर्यो।

पार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आतम पर बोध मन तत् विचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहसे तिरंग माणे नानक प्रसाद अंगद सुमत गुरु अमर अमर वरतायो गुरु रामदास कल चरहत अटल अमर पद पायो संतोष सरोवर बसै म्यो रस रसन प्रकाश मिलत शांत उपद दूरत दूरंतर नास सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटाय संजम सत संतोख सिर सनामा फुटाय सतगुरु प्रमाण बेदन सिरो जग जस तूर बजायो गुरु रामदास कल चरत अब अमर पद पायो जग जित्यो सतगुरु प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुरु अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नव निज नाम निदान रिद सिद ताकी दासी सह सरोवर मिलियो पुरख पेट्यो अविनाशी आद

समायो आदोने संप्यो जगत गुरु बचन तरायो अभिगत अगोचर अपर पर मन गुरु शब्द वसायो गुरु रामदास कल चराता जगत धारण पायो जगत धारण नव निधान भक्ता पवतारण अमृत बूंदर नाम विसके बिकै निवारण सहित रोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुरु प्रसाद पायो तन ते जन पर बड़ पागे ते मुगत पायो सदगुरु शब्द मन गुरु परचा पायो गुरु रामदास कल चराचै शब्द निशान बजायो सेज सदा सहज छावाण संतोख सरायो सदा सील सनासो है गुरु शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बो है अजोनियो पल अमल अजोनियो पल अमल सदगुरु संग निवास गुरु रामदास कल चरा तो सरोवर वास गुरु जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवास है जिनको गुरु सो प्रसन्न दुर्त दुरंतर नास है जिन गुरु जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवार है जिनको गुरु सो प्रसन्न सबद लग पव जल तार है परचो परवान गुरु पायो तिन सके अथ जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुगत सब गुरु लाग

विचार अनस जप धर्म करम पूरे सदगुरु पाई है। हों बल बल जाऊं सदगुरु साचे नाम पर, कवन उपमा दो कवन सेवा सरे हो, एक मुख रसना रस जुग जोर कर। फुन मान बच करम जान अनंत दो जाना मान, नाम सो अपार सार दिनो गुर रिद धर, नल कव पार स्पर्श कच कंचना हो चंदना सुभाष। जा सिमरत अन्न तर जाके

जास सब विद मान्यो मन तबे पयो परसन राज जोग तक त्रियन गुरु रामदास राड जिसे तरे तारियो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रिख निस सुर दिन सैल तरव फल फुल दियो स्वर्ण सबत समुंदर किया धारियो त्रिपवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुरे अमर प्रकाश कंचो कंचन पायो शब्द गुर सरवण सुनयो बिकत

संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस के रे फन दुखन नास दुख दुखन नास सुखदायक

गुरु कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियोस पिवन के बंचत सिद्ध को विद मिलायो पूर्ण पौ मन ठौर बसो रस बासन स्यों जो चौहंग दिस तायो।

के पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो अब राखो दास पाठ के लाज जैसे राखे लाज भगत प्रहलाद केरनागत पारे करे आज फन द्रव दे रा लाज रखी अर प्रभ दे चिन्हत बस्त्र दिन बवसाज जो सोदाम अवदाते राखे अगर का पड़द पूरा तो काज श्री सतगुरु सो प्रसन्न कल जगोय राखो दास पाठ के लाज चोरना गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपे नाम नाव ने दया पे रसन रस सद कर जान्यो पुन प्रेम रंग पाइये गुरमुखे त्याइये मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद तरो पंच भू बस करो जन्म खोलो दरियो द्वार हर बानिय जो ते सब सुख अत अत तुम बंचव गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान धन हर मन तरो ध्यान अनस करो बचन गुर हृदय तार फन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सार सदा निर्वय निरंकार निरपौ जप प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन ब्रह्म तजो नाम गुरमुख पद गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई उदद गुर गैर गंभीर बेअंतर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाइये पुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरत शब्द गुरु त्याई है अमृत प्रभा छिड़कंत शब्द वार जस ज्ञान गुर बिमल सार संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइये गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रह जा किसे सेव सिद्ध साधक सुर असर गुण तर ते तिस गुर बचन सुन कान रे फन तरह ते संत हित भगत गुर गुर कर तर प्रहलाद गुर मिलत मन जान रे

गुरु गुर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहिब सब उपर कर कृपा सत जुग जन थ्रू पारे श्री प्रहलाद भगत उदर अंग हस्त कमल मत पर धरि अंग अलख रूप जी लख नंद सारी सिद्ध सगल सरनाई गुर

भोजन जब पैकर बेचत चाओ आनंद नेत मंगल गुरु दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुरु दर्शन परसन परम पवित्र गच्छा जी चम लोक पतत जय प्राणी हरजन शिव गुरु ज्ञान रथ रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मन बंचा जाके स्वर्ण सतगुरु गुरु सेव लख गत जाके श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलार नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगाए आई है प्रतीत प्रतीत आई जन गुरु जन

kalte bacha ten taryo samandar ritar khanek ma jal har bimba jugat jagracha kundalne surdi sa sangat parmanand guru mukh macha sri guru sahib sabhi upar मन बच कर्म से भी है सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीव कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कैतमा जसो सदई पाद खाए जियो देख रूप तनुप महामग पई किंकनि शब्द चंतकार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके इस भम ज्ञान ध्यान हंतर्त ही चाहे जियो सत साहि श्रीनिवास आदि पुरख सदा तुहि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरिकार बेसुमार सर्वस सर्वर को काहे दियो सुथर चित भगत हित भेग धरियो हरनाक स्वरियो नक विदार दियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो छदम परम पर पार ब्रह्म लखे कौन थाए दियो सा श्रीनिवास साल पुरुष सदा तुहि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन कुंद दसन प्रिया सैत कंठ माल मुक्त शीस मोर पंख चाहे दियो बे वजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम खेल की अपने उचाए दियो कथ कथक तीन दाय तीन लोक रिया समाय सुत सद रूप धरियो साहन कसाहे दियो सत साह श्रीनिवास आद पुरख सदा तुहि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे दियो सत गुरु सत गुरु सत गुरु गोविंद दियो बल

सकलपवन कुशल कर्ण सर्वूतयापे दैवादेवस्यासमुखपानंदजय जरम करम वाचिकाच वैवराजमनक कुलखेलखेलो जनकेन्द्रजय नाम सारिय तार तदविकारमन गयांद सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु गोविंदजय श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुरु कया मान निज निधान सच जान मंत्र निशुभासुर हो कल्याण लह परम गत जियो काम क्रोध लोम जन जन सो छाड़ तो मैं फंद काट सा संगत रत जियो देह गह त्रय सुने चित बिलास जगते चरण कमल सदा सो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही तार तद विकार मन गयंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक प्रपुर जोग जोग वागुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रसुदा सलाम कह न सक कौ तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिर तय अगंत तिनको मोह पया मन मद का चौरासी लख जो न्योपाई रिजक दिया सब हूँ कौ तद का सेवक है प्रभुर जोग जोग वाह गुरु तेरा सब सदका वाह वाह का बड़ा तमाशा पे हसे आपे चितवे आपे चंदूर प्रकाश आपे जले आपे जल तमने आपे किया कड़कड़ भाषा आपे नर आपे प्रणारी आपे सारे आपे भाषा गुरमुख संगत सब विचारो वाह वाह का बड़ा तमाशा की आखेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल तल गगन प्याल पूर रहे अमृत मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुरु प्रसाद पाइये परमार्थ सा संगत से ती मान खजना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने से बरंच धार ध्यान नित जिस भेद बखाण निरंकार निर्वैर अवर ने दूसर कोई भंजन गण समाथ तरन तारण प्रभ सोई नानक प्रकार नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रस श्री सत नाम करता वर गुरु रामदास चिताय बसै गुर समरथ गै करिय त्रुह बुद्ध सुमत सुमारण को फुन धर्म तुजा परंत सदायक पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न बेचारण को।

महिमा पंथ तरियो तरणी तर आप लेव तारण तावत है मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छती प्रभाव।

सोतेन सदगुरु सुख पाए कृपा तारी दे नाम के बढ़ाए दे गुरु रामदास को नाम निदान त्यानंत्र का तेज पुंज तव रूप प्रकाशे देख दर्श पटक परम पजत दुख पर हर सुख सह स्व विगासे शिव सिख सदात लोभत वल समूह ज्यो कुसुम सुभाषे विद्यामान गुरु आप थप्यो थिर सच तखत गुरु राम दासे तारियो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ फोन कीर्तवंत सदा सुख संपत हृदय सिद्ध ना छोड़ सत दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो है तथ ताय का प्रवाह कहु के जाके बसी सुतरियो गुरु हथ तीन पवन पर पुर रहे सोई अपनो सरस कियो न जगत कोई आपने आप ही अपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो अपायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गंधर्व खोज अंत विराय अविनाशी अचल अजनी संप परखो तम अपार परे करण कर्ण समरा सदा सो ही सर्व जी मन त्यायो

धन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुरु अमरदास करतार कियो वासु वाहु वाहु करते आयो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं चय हर परम पद पायो। नार तू प्रहलाद सुदामा पुप भगत हर के जो गणंग। अमरीक जय देव त्रिलोचनामा वृक वीर पणंग। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगत पर छायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं चय हर परम पद पायो। मनसा कर सिमरन तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणंग। बाचा कर सिमरन तुझे तन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणंग। कर्म कर तो ऐसा दर्श परस पार सर बल पट जस गायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं चय हर परम पद पायो। जय सतगुरु सिमरन नयन के तिमर मिटे कन। जय सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुरु सिमरंत जी के तब तुम टाव। जय सतगुरु सिमरंत हृदय सिद्ध नाव निध पाव। सोई रामदास गुर बल पाण मिर संगत तन तन करो। जय सतगुरु लग प्रभाई है सो सतगुरु सिमरो न रहो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ो पास। ताते गौर ज्ञान प्रगट उजारियो दुख दरिद्र को दुख दरिद्र अंधार को नास। कब कीरत जो संत चरण।

गुरु रामदास जिन सतगुर से पदार्थ पायो निसवासन हर चरण निवास तंत संगत सगन पाए पव माने तुम मलिया गुर प्रगट सुभाष स्वरूप प्रहलाद कवि तलो चरनाम लैत उपजो जो प्रगास जे पिकत अत होय रहस मन सोए संत सार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानो कीने पर प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तीन शब्द सुरद के नेम रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जे कद कही ना जाई सोडे सृष्ट सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाई हमें अवगुण पर एक गुण नाही अमृत चढ़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै भूल सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंस न्यो गुरु संगत तय मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई मोह मल बिफस कियो काम गह केस बचाड़ियो क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान सो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुकम जो होए सो मन पव सागर बांधियो सिख तार सो प्रसन्न सिरियात पत सचो तखत जोग भोग सुजत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चो जोगे आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख से बंत तुर तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रैलो अगम निगम उदरण जरा जम आरोहर गुर अमरदास सिर थाप्यो परगामी तारण तरण अग अंतक बदे न सल कब गुरु रामदास तेरी शरण सोइये महले पंजमे के पंजमा क्यों कर सतगुरु प्रसाद सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी सिमरत दुरमत मालनासी सतगुर चरण कवल रिद तारंग गुरु अर्जन गुण सहज विचारंग गुरु रामदास कर कियो प्रगास सगल मनोरथ पूरी आशा तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुज सुवखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुरु नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन माने संतोखियो गुरु नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुरु दरसायो गुरु अर्जन घर गुरु रामदास अन भौ ठहरायो जनक राज बरताया सतुकालीना गुरु शब्द मन मान्या आप तीज पतीना गुरु नानक सच नीम साज सतगुरु संग लीना गुरु अर्जन घर गुरु रामदास अपरंपर बीना खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बद सतगुरु सम माण्यो अजोने संप्यो सुजस कल कवियन बखाण्यो गुरु नानक अंगद भरियो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जन वर पारस परस परमान

चाह हर निदल्यो सुन सहज निज कर सहारो हर नाम लाग जग उदर्यो सतगुर हृदय बसायो गुर अर्जन कलच रहत जन कह कलस दी पायो सुरठ गुर अर्जन पुरख परमान पारथो चाला नहीं निजा नाम निशान सदगुर शब्द सवार्यो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहता तोय सदगुर संग हेत नाम लाग जग उदर्यो

अंगद पायो तत सो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छतर गुरु राम में दियो गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बयान मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिख नयन सत रूप सत नाम सत संतोग तरयो और आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तोर परगट जोत जग मगै तेज पो मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख राहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल सिष्ट लग बितरो तह जन जाचौ जगतर पर जानियत वासन रयन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगो बासना ते बाहर पै देखित ताम स्यों अपर परम पर पुरख स्यों प्रेम लागो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्वमय अर्जुन गुरु भगत के हित पाए रायो मिल राम स्यों अंत न पावत देव सब मुन इंद्र मां शिव जोग करी फुन वेद विरंच विचार रहो हर जाप न छाडो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत

रे पछतायो। तत् विचारी अहमथरा जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नाय आयो। कल

बैठायो रस की असुर देव तोहे जस जय जय जंप है असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंप काटे सो पाप तिन नर हो के गुरु रामदास जिन पायो छतर सिंह।

दोही दुचै दुर्जना मित्रा कु जयकार जित दोही सज्जन मिलना लह मुंदे विचार तन मन दीजे सज्जना ऐसा संसार तिस सोनेहो न कीचै जे दिसे चलन हार नानक जिनी इव कर बुझिया तिना बिटों कुरबान जे तू तारू पान ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वंजा इनी कपरी चढ़ चखड़ो हाड़ लहनी वहन लखेसरी सतगुर सिओ आलाए बेड़े डुबन नाहे पाओ नानक दुनिया कैसी होई सालक मित न रहो कोई भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया है करके ओए करे न गल्ला पिटन सिर खोहे न नाओ लैण अर करण समाए नानक तिन बलहारे जाओ रे मन डीग ना डोलिया सीधे मार्ग ताओ पाछे बाग डुरावनो आगे अगन तलाओ सहसे जियरा पर रहो माँ को अवर ना ढंग नानक गुरमुख छुट्टिए हर प्रीतम स्यो सांग भाग मरे मन मारिए तिस सतगुर दिखिया होए आप पछाणे हर मिले बौड़ न मरना होए कीचड़ हाथ न डुबई कानदर निहाल नानक गुरमुख उबरै गुर सरवर सची पाल अगन मरे जल लोड़ लाओ विण गोरा निद जल नाहे जन मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जगात ना लगई जे चल सत गुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मिले मिलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाव गणी तिंज परी गंदी आए सरवर हंस न जाने काग कुपंखी सांग सागत स्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुर तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गनी जाहर भगत ना पाओ पैंदा खादा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा लाओ नानक नाम सलाहे तू हुर होमे आवो जाओ हैन विरले नाही कणै फैल फकड़ संसार नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान झोटे सेती जो मरै लगी सा परवान जिसनू लाए तिस लगै लगी ता परवान पिरम पै कामना निकलै लाया तिन सजान भांडा धोवे कौन जे कच्चा साजे आउ तातू बांजर लाए कूड़ा पाजे आउ भांडा आन गुरास जां तिस पावसी परम जोत जगाए वाजा वावसी मनो जे अंधे कूप कहा बिरद ना जाननी मन अंधे उदय कवल दिसन खरे करूप एक कह जानन कहा बुजन ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना बेद ना घी रस रस कस ना जानंत एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना कल सार अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खार जे बेन गोर न गर्भ करंत जो ब्राह्मण सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म जब तब संयम कमावे कर्म सील संतोख रखे धर्म बंधन तोड़े होवे मुगत सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर
पुन दान का करे शरीर। खेत पछाणे बीजे दान, सो खत्री दरगे परवान। लभ लोभ जे कूड़ कमावे, अपना कीता आपे पावे। तन ना तबाए तनूर ज्यों।

सो किरत न मिटी राम। लाहौर सहर जहर कहर सवा पैर महला तीजा। लाहौर सहर अमृत सर सिपती दा घर महला पहला। उदो साह क्या निशानी टुट न आवे अन्नी। उदो सी घरी ही बुठी कूड़ी रन्नी तम्मी। सती रन्नी घरे स्यापा रोवन कूड़ी कमी। जो लेवै सो देवे नाही खट्टे दम सुहमी। बब्बर तू हरी आवला कबला कंचन वन। कह दुखड़े सड़े ओए काली होइया दोहरी। नानक मैं तन भंग जाना पानी नाला जै सेती मेरा संग। जित डिठे तन पर फड़े चढ़े चवगन वन। रज न कोई जीवया पहुंच न चलिया कोए। ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती ही पत होए। सरफे सरफे सदा सदा वे गई विहाय। नानक किसनू आखिए बिन पुछिया ही लै जाय। दोसना देओ राए नू मत चले जा बुढ़ा हूवै। गल्ला करे कनेरिया ताने पवना खाती टोवै। पूरे काकिया सब किछ पूरा खट वद किछ नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही। श्लोक महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अभ्यागत हे नाखिया। जिनके मन में भरम तिनके दिते नानका तेहो जेहा धर्म। वह निरंजन परम पद ताका पीख कोए। तिस का पूजन नानका विरला पाए कोय। हुवा पंडित वेद हुवा पंडित हुवा पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार। नवा खंडा विच जानिए अपने चज विचार। ब्राह्मण कैली कात कंच का नचारी का धान। फिटक फिटका कूड बदिया सदा सदा बमान। पाए ते जाए विसर नानका एक नाम।

गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश तिथे ऊंग ना भुख है हरि अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चुलड़ा सब गल आए पाए एक उपजै एक बिनस जाए हुक्म आवे जाए जमना मरन ना चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाई अना करना कछु ना जाए जिनको कृपा तारी अना तिना सतगुर मिल आया सतगुर मिले उल्टी पई मर जीवे आ सहज सुभाए नानक भगती रते आ हर हर नाम समाए मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई

दूजै क्यों सुख होआए। हमे अंतर मैल है शब्द ना काढे धोए, नानक बिन नामे मैल आमुए जन्म पदार्थ खोए। मन मुख बोले अंदले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करे प्रगास। ओना अपनी अंदर सुध नहीं गुरबचन ना करह विसास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की रखदा हाँ सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेव दे जन नानक ता का दास। माया बेअंगम सर्प है जग किरिया बिखमाए, बिख का मारण हर नाम है गुरगढ़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखे तिन सत गुर मिल आया, मिल सत गुर निर्मल होया बिख मैं गया बिलाय। गुरमुखा के मुख उजल हर दरगह शोभा पाए।

आए। अंतर क्रोध अहंकार है, अनदिन जलय सदा दुख पाए। कूड़ा बोला बोल नित भौंक दे, बिख खादे दूजे पाए। भिख माया कारण भरम दे, फिर कर कर पत गवाए। बेसुआ केरे पूत ज्यों, पिता नाम तिस जाए। हर हर नाम ना चेतनी, करत आप खुआए। हर गुरमुख कृपा तारी, अनाउ जन विछड़े आप मिलाए। जन नानक तिस बलहारणे, जो सतगुर लागे पाए। नाम लगे से उबरे, बिन नावे जम पुर जाहे। नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताए। चिंता तावत रह गए मन में मन, चिंता तावत रह गए ता मन पया आनंद। गुर प्रसादी बुझिए सा, धन सुती नचेंद। जिनको पूर्व लिखिया, तिना भेटिया गुरु गोविंद। नानक सजे मिल रहे, अर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना, गुर सबदी विचार। सतगुर का भाणा मन लैना, हर नाम रखे उर धार। एथे उथे मनिया न, हर नाम लगे व्यापार। गुरमुख शब्द संजाप दे, तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच, अंतर प्रेम प्यार।

सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ध्यान। ओहि सदा आनंद बिबेक राय दुख सुखे एक समान तिना नदरी इको वाहिया सब आत्म राम पछाण। मनमुख बालक बिरद समान है जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय के जाही सब धर्म राय कै जाही। गुरमुख अछे निर्मलाए गुर कै शब्द सुभाए ओना मैल पतंग न लगाई जे चलन सतगुर पाए मनमुख झूठ न उतरे जे सो धोवन पाए। नानक गुरमुख मेले ओना गुर कै अंक समाए बुरा करे सो केहा सिज्जै अपने रोहे आपे ही दज्जै मनमुख कमला रगड़े लुज्जै गुरमुख होए ता सब किछ सुज्जै। नानक गुरमुख मन स्यों लुज्जै जिना सतगुर पुरख ना सेवे ओ शब्द ना कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखी अन पशु ढोर गावार ओना अंतर ज्ञान ना त्या

विसराय। सोरड सोरस पीजिए कबू न फीका होए, नानक राम नाम गुण गाइए दरगह निर्मल सोए। जो प्रब रखे आप तिन कोए न मारई, अंदर नाम निदान सदा गुण सारई।

सुनारी। पंचम हरखद साख सुनावे, बंगालम मद माधव गावे, ललत बलावल गावही अपनी अपनी पात, अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र। द्वितीया माल को साक्या लापे संग रागनी पंचो थापे, गुंड करी अर देव गंदारी, गंदारी सिहती उचारी। तनासरी ए पांचो गाई, माल राग कौ सक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड को सके ओवारा। खौ खट आओ भौरा आनंद गाई, अष्ट माल कौ सक संग लाई, पुन आयो हिंडूला पंच नार संग अष्ट सुत, उठै तान कलोल गायन तार मिला वही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरसिहरी लै भर जा संग लाई, पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आई, चंद्र बिमंगलन सुहाई। सरस बान आहे बनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, आई।

को मन जाने मन कोय, मनै मार्ग ठाक न पाए, मनै पत स्यों प्रगट जाए। मनै मग न चलै पंथ, मनै धर्म सिति सुन बांधै, सा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। मनै पावे मुख दुआर, मनै परवारे साधार, मनै तरे तारे गुर सिख, मनै नानक भवे ना भेकै, सा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दुर्गे मान, पंच सोहै दर राजान, पंचा का गुरेक ध्यान। जे को कहे करे विचार, करते कह करन नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जनसूत।

जाना कन्या तिखे वालो निके अत मार्ग जाना गुरु प्रसाद जने आप तजर वासना सुमाणी कह नानक चाल भगत जुग जुग निराले ज्यो

न जाए सहसा किता संयम रहे कर्म कमाए सहस ज्यो मलिन है कित संयम तोता जाए मन तो बहु शब्द लागो हर्ष।

कमाणी कूड़ के सोए पहुँचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनि खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले जेको सिख गुरु सेती सरमुख होवै होवै ता सरमुख सिख कोई जी हो रहे गुर नाले।

जिनको नदर कर्म हो वह हृदय तिना समाणी पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह ना।

कंद कच सुनंद कच कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर रसना कहा कछु न जानी चेत जन का हिरलिया माया बोलन पैरवाणी कहे ना।

जिन सतगुर सिंह चित लाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत तरी हर बिन